0: Extreme energy drink.
1: अनि तयो कागज के मेची वा अँ झिल्काई के पर्सनल नम्बर ब्लक लै बजी पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी यो टेलिकमर भए अफिसर आएर ब्लक लै र खलखाई अनि बैंकरी बैंकरी अँ चर्चै तले लग पर्दी सँग

0: सामाजिक सञ्जालजी छ्यानले जाँचीमरी बुझीमरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइलबाट फलोलाना खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उइसु सु खन क्या खलो सुजित बिमिलो खन यामु बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दिउ वेबसाइट ना URL चेक लना आछ्यावा घटना तल आपिबै लागि समय समयरी आफै न पासपोर्ट फेरदिल परेमो नुई टोय तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
1: सतर्क तन ठगे तब त क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

आवाज बिहीन को आवाज परिवर्तन को संवाहक रेडियो दीदी बहिनी 95.2 MHz समय गतिशील छ, जब समय बोल्न थाल्छ संसार सुन्न थाल्छ। यो हो महासंचार नेटवर्क समयको आवाज।